हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरुजी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको, ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मारदानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही

0: मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है। मतलब वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाये हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me and we'll find a way to get the money and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Kedonar?
1: Did I say?
2: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahmarishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahmarishi, P. Thawla, Nagor.
3: Nagor. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताई है वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, शीलता नहीं है, शुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा, हम आए संसार में कबीरा, हम आए संसार में जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जगरो। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में, मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनके शरण में आया हूं। क्या तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना, मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि मैं महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

नाथ हरे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे, ये सब लीला उस ईश्वर की तू ध्यान।

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, देखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवेगा। जब परमात्मा की कृपा होगी

पैसे कुछ नहीं है, पैसे भगवान नहीं है। कलयुग में रुपयो राम तो देख लो कहीं हो रहा खोटा खोटा काम है। इसीलिए दैट्स वाई द डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अनाउंस बाय आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड द होल वर्ल्ड वॉज सो हैप्पी दे थैंक्स द मोदी जी एंड इट बिकेम वेरी फेमस। बट देयर वॉज अ टू अलार्म एज सून इट वॉज अनाउंस्ड। फर्स्ट अलार्म वॉज फॉर दोज योगीज हु इज लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, दे आर इन डेंजर्स बिकॉज दे डिड नॉट अलाउड योगीज टू स्टे देयर एंड टीच योगा बिकॉज इट्स अ रिलीजन। सो दे वर एंग्री, दे वर अटैकिंग। बट देन देर वॉज ए ओम एंड आयुष वॉज ऑल्सो ओम एंड सडनली मूव्ड अदर कंट्रीज पीपल वेर लाफिंग। इंडियंस आर सो कावर्ड फियरफुल। ओम को हटा दिया, ओम को हटा दिया तो मानवता को हटा दिया है। ओम है, ओम से तो आमन आया है। ईसाई कहते हैं आमन है, मुसलमान भी ऐसे कोई समझे क्या कहते हो, आमीन कहते हैं है? तो आमन आमीन ओम से ही तो है। देयरफॉर ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लीज डू राइट ए लेटर डायरेक्टली टू ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया respected Narendra Modi ji, and write your opinion, because we are not afraid of the religion. Religions are not bad. No one is afraid of religion, those who are practicing yoga out of India. Only within India you are, jabki tum India ke hi ho. So yoga is not a religion, not a fanatism. It is yoga, is a cosmic law, the cosmic science. Yoga is a uniting, balancing and harmonizing. And that is Om, Akar, Ukar, Makar. And that Ekoham Bahushyami, that time was no name of any god. Upanishad has no name of any incarnation. Vedas have no name of any incarnation. Only Brahman. So you say Holy Father and we say the Brahman. So science of yoga and Bhagwan Shiva, Swayambhu, he is the author of the yoga. Mantra, Yantra, Jantra, Jnana, Dhyana, Meditation, Yoga, whatever all what human knows today is the blessing of the Shiva given to the mankind in order to serve all creatures and protect the humans from the Asuri Shakti and lead towards the Devik Shakti. So I'm sure people will appreciate, the whole world is celebrating the 21st of June and they are thanking the Modi ji. And our Brahmalina Pujya Anandananji Maharaj, his Mahasamadhi Day, Brahmalin Day, is also 21st of June. So how? So we can celebrate Day of Yoga and Swamiji's Barsi celebration. So my dear India, still Indian Bhaktas, Indian people, every Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, all they are helping the Nepal people and many, many people from many, many countries, they are coming. We are thankful for them and we pray to Almighty that

0: विद्दु एंड वेन इज थिंग एवरीथिंग इज हैव डन देन हाउ दैट
1: Sve je prikazano.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Shiva koji pleše.
0: Da, da. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, एक पैर, एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो हैं नींद का और ये जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्र चक्र

जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य

0: परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं,
1: आप ट्रांसलेट करो।
2: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhya Mahamalesha Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में, ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही
2: है। सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स of which our dear Mahamandaleshwar ji is telling for Vishwa Guruji has a long translation. So he says that revered and respected Vishwa Guruji, Paramahansa Maheshwarananji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: Aur mujhe aisa lag raha hai कि स्वामी जी की ये साधना ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे।
2: एंड ही थिंक्स दैट दिस तपस्या दिस काइंड ऑफ साधना विल ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल इन द फ्यूचर।
0: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है।
2: इन इंडियन ट्रेडिशन देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु।
0: हमारे भाष्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं,
2: शंकराचार्य जी सेज इन हिज भाष्य इन हिज कमेंटरीज,
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है।
2: इफ समबडी इज ग्रेटर देन गॉड देन दिस इज गुरु।
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है,
2: नोबडी सॉ गॉड,
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं
2: एंड गुरु इज इन फ्रंट ऑफ अस।

पीयूषां बुद्धिमंथनोद्भवरसा मुल्लाशनी माधवी श्रीमद्भागवताख्य धाम बसती राशेश्वर प्रेयसी पंचाध्याय लसत तनुर्विजयते।

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu

0: Hindu Dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
1: Dhriti kshama damoisteyam socham indriya nigraha dhira vidya satyam krodham darsakam grast lakshanam dharma lakshanam. Pehla hai dhairya.
0: First is
1: dhriti. Dhirti mani dharan karna.
0: So to endurance.
1: Jaise abhi sister ga rahi thi.
0: Patience.
1: Ki hamare saath Vishw Guru ji hai. Hamko koi samasya nahi hai. Koi kami nahi hai. Koi abhav nahi hai. Isi ko kehte hai dhirti. Pakad.
0: So this is like when Vishw Guru ji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
1: Guru ji ne jo aapko mantra diya hai, upadesh diya hai, aur apna lakshya bataya hai.
0: So whatever the Vishw Guru ji told, Guru ji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do.
1: Us par pakad rakhna.
0: You have to follow.
1: Isko dhirti bolte.
0: This is called dhirti.
1: Shama.
0: Endurance, patience.
1: Koi chota aadmi agar koi galti kar jata hai, to bade aadmi ko usko chama karna chahiye. Jaise कोई क्षमा भी मांग लेता है कोई क्षमा कर लेता है. I am very sorry.
0: So first one was patience, the second one is to forgive. So whatever, whoever does something, you either forgive to them or you forgive to others.
1: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है पति पत्नी है उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए.
0: So in the first class to the husband and wife they should think about God.
1: दृति क्षमा दमस्तेम प्राइमरी में है किसी भी वस्तु की पैसे की अन्न की धन की चोरी नहीं करना नहीं करता है.
0: The third step is do not steal. Whatever money, things or something you have, they should not steal.
1: Pavitrata.
0: Purity.
1: Pavitrata bahut jaruri hai. Main plane mein safar karta hu to keval wahan ear leta hu. बाकी कुछ नहीं क्योंकि वो लाते हैं एक्सक्यूज मी वेज नॉन वेज वेज नॉन वेज.
0: सो प्योरिटी लाइक इन एरोप्लेन आई टेक ओनली वाटर बिकॉज़ और एयर बिकॉज़ द पीपल आर ऑफरिंग वेज नॉन वेज एंड ऑल दिस इम्प्योर थिंग्स.
1: वो पवित्र नहीं होता शुद्ध मानी शुद्ध नहीं होता.
0: दे आर नॉट प्योर दे आर नॉट क्लीन.
1: तो धृति क्षमा दमस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह. हमको ऐसा खाना चाहिए ऐसा व्यवहार करना चाहिए ऐसा सुनना चाहिए ऐसा देखना चाहिए जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े हम उसमें ऊपर को आवे ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
0: सो वी शुड ईट ड्रिंक थिंक लिसन और व्हाटएवर वी डू शुड बी इन अ सच अ वे दैट आवर लाइफ ग्रोस दैट वी आर गोइंग अपवर्ड्स इन द अपर ट्रैजेक्टरी.
1: हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है आपका आहार शुद्ध होगा
0: व्यवहार
1: एक मिनट आहार शुद्ध होगा व्यवहार शुद्ध होगा आहार शुद्ध सत्व श्रुति, तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
0: In Brihadaranyaka Upanishad it says, if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
1: Dhir vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam. Dhir vidya, buddhi, mind. इसको बुद्धि को सदुपयोग में लाना चाहिए. धी बनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी बनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
0: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी for good, it should be pure, and this happens from the food.
1: Vidya,
0: knowledge.
1: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं. सा विद्या या विमुक्त ही. जो आपको उलझावे नहीं, सुलझावे. उसका नाम है विद्या.
0: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू. व्हाट डजंट कवर यू और मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री.
1: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं आप.
0: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
1: Hamare vedon mein sarvapratham do baat ki shiksha di gayi hai, satyam vado dharmam chara. Satya bolo, dharma ka acharan karo.
0: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning: tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
1: A course aapka primary ka 15 minute mein pura ho gaya.
0: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
1: Ek hi aadmi ke liye, ek hi sadhak ke liye, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
0: सो फॉर एनी साधका, एनी भक्ता, एनी डिसाइपल, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, ऑल दीज प्राइमरी थिंग्स आर नेसेसरी एज अ बेस.
1: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा अलग नहीं है. एक ही रोड के अलग अलग नाम.
0: सो देर इज ओनली वन रोड विद द डिफरेंट नेम्स. समबडी इज कॉलिंग योगा, समबडी इज कॉलिंग ज्ञान, समबडी इज कॉलिंग दिस और दैट. देयर आर नो डिफरेंट रोड्स.
1: बंबई सूरत रोड प्राइमरी, सूरत बड़ौदा मिडिल, बड़ौदा रतलाम हाय, रतलाम
2: इज टेलिंग द मैप ऑफ इंडिया.
1: इंडिया सेम लाइक इट मेक्स द फ्यूचर. एक ही रोड के जैसे बंबई से सूरत, बंबई सूरत रोड नाम हो गया. और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता.
0: So like when you start from Bombay going to Surat, this is called Bombay Surat Road. When you cross Surat, it's called Surat Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
1: Middle ka arth hota hai yog marg, जिस मार्ग का नाम जितना का मार्ग का नाम योग है उसको योग बोलते हैं.
0: द मिडिल स्कूल इज योग.
1: योग में आपके लिए 8 पुस्तक हैं जिनको आपको ध्यान दे करके पढ़ के पास होना है.
0: सो इन द योगा देयर आर 8 बुक्स इन विच यू हैव टू स्टडी एंड देन पास.
1: यम नियम. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक. यम यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान. अपने को नियमित करना उस पुस्तक का नाम है नियम.
0: The book which tells us how to control ourselves is called Niyam.
1: Niyam. Yam, apne ko rokna.
0: Yam is the book which tells us how to stop ourselves.
1: Ka arth hota hai, jo yoga ke liye kaha hua, yogas chitta vritti nirodha, wo niyam ho gaya.
0: So Niyam is this first line that when your thinking stops, when your...
1: Niyam means kanun ko pass. पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.
0: To follow the laws and rules to put it in your life, this is called नियम.
1: यम नियम के बाद में आसन है.
0: After that is yam.
1: बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं. हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना इसका नाम है प्राणायाम. और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना ये है आसन.
0: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन. एंड द फोर्थ बुक अबाउट प्राणायाम एंड हाउ टू कंट्रोल द एयर एंड यूज इट फॉर द प्यूरिफिकेशन.
1: आसन से आपकी बॉडी शुद्ध होती है और इसी प्रकार से प्राणायाम से आपके अंदर 5 ईयर है वो 5 ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए सामान की मटेरियल की सामान की.
0: सो लाइक द आसनस प्यूरिफाई द बॉडी मेक इट क्लीन द सेम वे द प्राणायाम डज फॉर ऑल दिस 5 प्राणस 5 टाइप्स ऑफ एयर which then service our body properly.
1: उसके बाद में प्रत्याहार आता. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है short and sweet. समझ गए? प्रत्याहार माने अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से contact सब खत्म करना इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
0: सो प्रत्याहार इज टू विड्रॉ वनसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वनसेल्फ इनसाइड.
1: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
0: सो नाउडेज इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा, इट्स ओनली मेंशनिंग जस्ट आसनस एंड प्राणायामस व्हाट इज गुड फॉर द बॉडी, बट यामा एंड नियामा द रूल्स ऑफ आउटर एंड इनर बिहेवियर दैट नोबडी टेल्स.
1: आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
0: after the asana and pranayama,

0: Pranayam Pratyahara should come, but people started business before Pratyahara.
1: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
0: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
1: ये मेरा च्यवनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रत्याहार यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
0: So
1: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
0: So instead of pratyahar, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
2: Guruji, ये बैठा
1: नहीं. बाबा रामदेव जी. कहाँ? अच्छा वो हमारा चेला है वो. इनको पता है सबको. तो उसमें ये है. अब इसके बाद में होता है धारणा. धारणा जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
0: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन.
1: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं. ये मेरा संगीत वाला है. धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला. ओ भाई,
0: सो यू लुक
1: संन्यास लेगा,
0: मींस धारणा
1: नहीं लेगा. नो धारणा.
0: धारणा मींस एक्चुअली आल्सो कंसंट्रेशन. सो यू लुक एट माय द ढोलक पर्सन इफ ही वांट्स टू हैव संन्यासा. सो ही सेड नो थैंक यू.
1: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
0: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara, you are a great person.
1: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो. So, तुम भी संन्यास ले लो. उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नो नो नो नो नो.
0: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi. You also take your 21 generations across this world. I said, no, no, no, no, no, thank you so much.
1: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
0: So desires in this life, they are not fulfilled for this person and his concentration towards God, dedication is not there.
1: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है. ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
0: Before meditation, you need some knowledge.
1: एक जो है वो ध्यान बिजनेस बन गया.
0: And this knowledge became now business.
1: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है. लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
0: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make, it's like a type of business. But before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
1: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है money. तो money 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
0: So if I tell you please take the money from me and then I give you 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees, which one you will take?
1: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
0: From all of
1: 500 का ना 500 का
0: From all of this you will take
1: 500 का ठीक है ना
2: 2000 का
1: बंद कर दिया मोदी ने यार 2000 दे दे 200 का नहीं कैसी बात कर रहा है अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी नहीं लेगा क्या
0: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
1: सभी अभी शर्मा रहे हैं लेकिन जब मौका मिलेगा तो
0: Now we are like
1: again hand. Yes.
0: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
1: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती
0: सो यू कैन डू ध्यान ध्यान विच व्हेन यू वैल्यू समथिंग रियली मच
1: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्तोपि दुखेना गुरुणा न विचालयेत तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है कीमत होती है महत्व होता है उसी को आदमी याद करता है
0: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
1: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज्यादा है
0: लाइक इफ यू हैव चिल्ड्रन वाइफ और हस्बैंड एंड देन यू गो फॉर मेडिटेशन इवन इन दिस आफ्टर द मेडिटेशन यू विल कंटिन्यू थिंकिंग और ड्यूरिंग द मेडिटेशन विल कंटिन्यू थिंकिंग ऑन देम बिकॉज दे आर समथिंग वैल्यूएबल इन योर लाइफ यू
1: मनुष्य के जीवन में परिवार होता है संसार होता है लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता है
0: देयर इज अ
1: फैमिली क्योंकि गोल्ड कीमती होता है महत्व का होता है उपयोगी होता है
0: द फॉर एनी ह्यूमन द लाइफ द फैमिली एंड द संसार दिस वर्ल्ड इज वैल्यूएबल बट द गोल्ड इज मोस्ट वैल्यूएबल
1: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है समाधि हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था दिल्ली में हाँ दिल्ली में समाधि सिस्टर है समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है केवल केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है उसको समाधि बोलते
0: समाधि इज व्हेन यू फील ओनली योरसेल्फ देयर इज नो कनेक्शन विद योर बॉडी देयर इज नो कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड यू हैव कनेक्शन ओनली विद योरसेल्फ
1: हमारे विश्वगुरु जी के ध्यान में ध्यान शिक्षण में 2 प्रकार की समाधि होती है एक सविकल्प एक निर्विकल्प
0: There are 2 types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
1: Sabikalp samadhi usko kehte hain, jahan par sadhak pakka hai. Aur usko upar uthane ka sadhan bhi sachcha hai. Aur jahan ki uska god, jo usko paana hai, wo bhi uski samajh mein hai, isko bolte hain sabikalp samadhi.
0: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
1: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है जहाँ पर न तो शिष्य रहता है न गुरु रहता है ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं अहम ब्रह्मास्मि
0: सो इन निर्विकल्पा देयर इज नाइदर डिसिपल देयर इज नो गुरु दे बोथ मर्ज इनटू द गॉड अहम ब्रह्मास्मि आई एम ब्रह्मा
1: ये हो गई अब 12वीं क्लास की 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे
0: So this is 12th class.
1: अब 12वीं क्लास क्या है भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं.
0: So 12th class is भक्ति.
1: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं. 9.
0: In the course of bhakti there are 9 books.
1: 9 पुस्तकें. बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना. नहीं, हमने सुनना चाहते.
0: सो फर्स्ट
1: श्रवण भक्ति.
0: सो फर्स्ट इज लिसनिंग. सो लिसन ओनली व्हाट विश्व गुरु जी सेज, नथिंग एल्स.
1: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो. ये कीर्तन है.
0: Kirtan or remembering is that you remember only the words of Ishwar Guruji, nothing else.
1: Yaad karo, to ek matra Guru aur Govind ko yaad karo, dusre ko nahi. Ye smaran bhakti hai.
0: Remembering the smaran bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
1: Surrender. Charanon mein jhuk jana. चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
0: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of master.
1: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की. दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
0: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
1: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं.
0: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called vandana. This next
1: दास्या, सेवक, शिष्य, उसको दास्य भक्ति कहा गया है.
0: Next one is serving, to serve the Guru and God.
1: दास, अपना अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं.
0: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई और ऑफ योर इगोइज्म एंड देन यू डेडिकेट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द गुरु.
1: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर गॉड, भगवान, गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
0: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन you believe and trust your guru so much that he also can become like your friend.
1: Hamare sanatan dharma vedic marg bhakti marg mein dheere dheere dheere dheere arjun jab krishna ke nazdik gaye to bhagwan ne unko phir das ne rehne diya, sevak ne rehne diya, unko sakha bana diya. Sakha, mitra.
0: So like friend. When Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
1: Iske baad mein atma nivedan bhakti aati hai. Bolo, Maharaj ji, ab main aapke saath hi kal subhere chala chalunga. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया. कहते आत्मनिवेदन.
0: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो विद यू व्हेयरएवर यू वांट.
1: वो आत्मनिवेदन है. आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं।
0: So it's a request of the soul that I want to live in that condition, I want to live in such a way like a God is living.
1: इसके बाद में फाइनल MA की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए, वो क्या है, ज्ञान की भूमिका।
0: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one. Or introduction to knowledge.
1: उसमें सात पुस्तकें हैं, उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई,
0: seven books
1: उसमें है। पहली बुक्स क्या है, सुभिच्छा। क्या है भैया सुभिच्छा? सुभिच्छा क्या है, बोलो गुरुजी। अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम कहाँ मना।
0: First book is Swaicha or the own desire, and you say, Gurudev, I want to live with you.
1: Acha, ab
2: dusra. Most welcome. I'm not stopping you.
3: I have no problem. Come.
1: आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं। अच्छा, अब बोलो, गुरुजी।
0: गुरुजी।
1: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास।
0: The second one is, oh Guruji, I think the same like you, and Guruji says, okay, then take sannyasa.
1: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है, उसको कहते हैं विचारणा। उसको क्या बोलते हैं?
0: विचारणा।
1: उसको विचारणा बोलते हैं।
0: Vicharna means thinking. It's like when your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
1: Tan Mansa. इसके बाद में जो है पुस्तक है तन मानसा। गुरु से जब विचार मिलता है तो जैसे बड़ी टंकी में से पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है, इसलिए उसको तन मानसा बोलते हैं। कनेक्शन बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन।
0: सो द नेक्स्ट वन इज तन मनसा, व्हेन द गुरु द नॉलेज ऑफ द गुरु स्लोली स्टार्ट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्मॉल पॉइंट ऑफ शिष्य ऑफ डिसिपल।
1: सत्वापत्ति। अब चतुर्थी जो है ज्ञान भूमि सुविच्छा स्यात्, प्रथमा समुदायता विचारणा, द्वितीय स्यात्, तृतीय तनुमानसा, सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात्, पंचम आसन से आत्म का पदार्थ भावनी षष्ठी, सप्तमी त्रियगाश्मृतम। तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते।
0: Sattvapatti is the next step when in guru and disciple there is no difference in their thinking and everything.
1: Padartha bhavani kehte hain, padartha bhavani. Jaise aapko chai yaad hi nahi aave, coffee yaad hi nahi aave, chutney yaad hi nahi aave, rasgulla yaad hi nahi aave, ice cream, phir 15-15 injection.
0: The next step is when you even don't remember, you know, neither any sweets or anything, any food you like. There is nothing there.
1: Padartha bhavani ka arth ye hai ki aapke samne stone ho aur aapke paas mein jo hai gold ho, is dono ko aap barabar samjhe, isko padartha bhavani bolte hain.
0: Padarth abhav, the detachment from the anything is like you can have a stone or you can have a goal for you, this is equal.
1: Nahin, pehle asanshakti. Asanshakti ye hai, asanshakti isko kehte hain ki kabhi koi relation mein aapke mother hain, father hain, brother hain, वाइफ है, चिल्ड्रेन है, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति.
0: Asanshakti is when you don't think and then you go back to your family, to your brothers, sisters, wife, parents and children.
1: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा.
0: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
1: पदार्था भावनी, जहां सोना मिट्टी बराबर लगे, कोई भी उपलब्धि, कोई भी प्राप्ति, संसार संबंधी जो अपने को प्रभावित नहीं करती हो, उसको शास्त्र ने असंशक्ति कहा.
0: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
1: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा, और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं. आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर वो क्या ना बोलते उसको,
0: सांप, सांप, स्नेक,
1: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे.
0: So like in Bhagavata there is this curse of king.
1: इसको पदार्था भावनी बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस नहीं हो, डरने लगे. और कृष्ण भगवान ने कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, नचेनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मार्ग. आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है वो भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है. ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी. उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं.
0: So this is that book Padarthabhav. There is no fear of snakes, there is no fear of death, there is no fear that the fire will burn you, you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the highest form.
1: Duriya avastha usko kehte hain, jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho, और आपकी उसके प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो, तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं.
0: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस और द माइंड स्टेट व्हेन यू हैव एनीथिंग अराउंड यू एंड देन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क इन दैट.
1: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरु जी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया.
0: सो इन आवर लाइफ्स from the starting point we have to pass all these tests and we have to convince the guru and the god that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This acharya ji is telling to us that we should success, we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
1: Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate Om Shanti Shanti.
0: Deep Narayan Bhagwan ki jai Devadi Dev Deveshwar Mahadev ki jai Indudaran Samrat Maravananji Bhagwan ki jai Rajguru Mahamandaleshwar Acharya Mahamandaleshwar Shokanand Bharatiji Maharaj ki jai

0: नम
1: श्री दीप नारायण भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की
0: जय
1: सत्य सनातन धर्म अलकपुरी जी महादेव की जय
0: की जय।
1: गुड इवनिंग
0: दोबर वेचर
1: माय डियर सिस्टर्स ब्रदर्स
0: ड्रागे सेस्त्रे ब्राचो
1: ऑल फ्रॉम अवर योगा इन डेली लाइफ
0: इज योगा सकुनेनो जीवोतु

विंदम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म

0: परमादरणीय, परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं,
1: आप ट्रांसलेट करो।
2: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhe, Ananta Sri Bhushita, Shraddhe Mahamalesha Swami Maheshwarananji Maharaj, Jinki Pavan Kirpa Se, इस आश्रम में, ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही
2: है। सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स of which our dear Mahamandaleshwarji is telling for Vishwa Guruji has a long translation. So he says that revered and respected Vishwa Guruji, Paramahansa Swami Maheshwarananji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी की ये साधना, ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी, आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे।
2: एंड ही थिंक्स दैट दिस तपस्या, दिस काइंड ऑफ साधना विल ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल इन द फ्यूचर।
0: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है।
2: इन इंडियन ट्रेडिशन देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु।
0: हमारे भाष्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं,
2: शंकराचार्य जी सेज इन हिज भाष्य इन हिज कमेंटरीज,
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है।
2: इफ समबडी इज ग्रेटर देन गॉड देन दिस इज गुरु।
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है,
2: नोबडी सो गॉड,
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं।
2: एंड गुरु इज इन फ्रंट ऑफ अस।
0: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं।
2: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
0: First, सबसे पहली मानव का जन्म।
2: First is the being born as a human.
0: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति।
2: Reaching the divine consciousness.
0: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग।
2: And third is the satsang with the great saints.
0: हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता।
2: We believe that human life is not available all the time.
0: मनुष्य जीवन में दो विशेषताएं हैं, एक तो हमें परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है, मनुष्य को वैसी बुद्धि किसी और प्राणी के पास नहीं है।
2: There are two things important in human form. One is the intellect which no other living beings have.
0: और दूसरा हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है, ये केवल मनुष्य को ही कर्म की स्वतंत्रता मिली है।
2: एंड वी आर फ्री टू डू व्हाटएवर थिंग्स, व्हाटएवर कर्म्स वी वांट टू डू, सो इंटेलेक्ट एंड कर्म्स आर समथिंग स्पेशली मेड फॉर ह्यूमंस।
0: हमें सबको समय बहुत कम मिला है, इसी समय का हमें सदुपयोग करना है।
2: वी गॉट अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड वी हैव टू डू गुड इन दिस टाइम।
0: हमारे यहाँ वेद में कहा है, इह चेद वेदी असत्यमस्ति ना चेद यहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरा प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृतः भवन्ति। जिसका भावार्थ ये है कि इस

गोपाल महोत्सवादिशकलै रावेष्टितं सुन्दरम् रासकीर्णन तत्परं हरिहर

विश्वेश्वरं मोहनं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं रामानुजं संभजे।

यसि पञ्चाध्यायलसत्तनुर्विजयति रासेश्वरी राधिका ओम शांति शांति शांति ही

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu Dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्ते यम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति माने धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस,
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरति, पकड़।
1: So this is like when Vishwaguruji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
0: गुरुजी ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है।
1: So whatever the Vishwaguruji told, Guruji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do,
0: उस पर पकड़ रखना,
1: you have to follow,

0: इसको धृति बोलते हैं.
1: दिस इज कॉल्ड धृति.
0: क्षमा,
1: इंड्यूरेंस, पेशेंस.
0: कोई छोटा आदमी अगर कोई गलती कर जाता है तो बड़े आदमी को उसको क्षमा करना चाहिए. जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है. आई एम वेरी सॉरी.
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकेंड वन इज टू फॉरगिव. सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स.
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए.
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड.
0: दर्शी क्षमा दमस्ते. प्राइमरी में है किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना. नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा.
1: The third step is do not steal. Whatever money, things or something you have, they should not steal.
0: पवित्रता.
1: Purity.
0: पवित्रता बहुत जरूरी है. मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं. क्योंकि वो लाते हैं, एक्सक्यूज मी, वेज, नॉन वेज, वेज, नॉन वेज.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, सोच मैंने शुद्ध नहीं होता.
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृति क्षमा दमयस्तेयम शोचम मिंद्रिय निग्रहा. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें. ऐसा खान पान, आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
1: सो वी शुड ईट, ड्रिंक, think, listen, or whatever we do should be in a such a way that our life grows, that we are going upwards in the upper trajectory.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है, आपका आहार शुद्ध होगा.
1: इन बृहदारण्यक
0: आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो सत्वशुति, तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
1: इन बृहदारण्यक उपनिषद सेज, इफ योर डीड्स एंड फूड इज क्लीन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाटएवर विश्व गुरु जी इज ट्राइंग टू टीच यू.
0: धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम ग्रस्त लक्षणम. धीर विद्या, बुद्धि, माइंड, इसको बुद्धि को सदुपयोग में लाना चाहिए. धी बनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी बनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड, इट शुड बी प्योर, एंड इट दिस हैपेंस फ्रॉम द फूड.
0: विद्या,
1: नॉलेज,
0: नॉलेज, जिसको नॉलेज कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं, साविद्या या विमुक्ति, जो आपको उलझावे नहीं सुलझावे, उसका नाम है विद्या.
1: Vidya or knowledge is that what frees you, not what binds you, what doesn't cover you or what makes you bound, what makes you free.
0: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं है.
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो. सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो.
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: ये कोर्स आपका प्राइमरी का 15 मिनट में पूरा हो गया.
1: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: एक ही आदमी के लिए, एक ही साधक के लिए, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
1: सो फॉर एनी साधका, एनी भक्ता, एनी डिसाइपल, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, ऑल दीज प्राइमरी थिंग्स आर नेसेसरी एज अ बेस.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा अलग नहीं है. एक ही रोड के अलग अलग नाम.
1: सो देर इज ओनली वन रोड विद अ डिफरेंट नेम्स. समबडी इज कॉलिंग योगा, समबडी इज कॉलिंग ज्ञान, समबडी इज कॉलिंग दिस और दैट. देयर आर नो डिफरेंट रोड्स.
0: बंबई सूरत रोड प्राइमरी, सूरत बड़ौदा मिडिल, बड़ौदा रतलाम हाई, रतलाम
2: इज टेलिंग द मैप ऑफ इंडिया.
0: इंडिया सेम लाइक इट मेक द फ्यूचर. एक ही रोड के जैसे बंबई से सूरत, बंबई सूरत रोड नाम हो गया. और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता.
1: So like when you start from Bombay going to Surat, this is called Bombay Surat Road. When you cross Surat, it's called Surat Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte.
1: The middle school is yog.
0: Yog mein आपके लिए 8 पुस्तक हैं जिनको आपको ध्यान दे करके पढ़ के पास होना है.
1: सो इन द योगा देयर आर 8 बुक्स इन विच यू हैव टू स्टडी एंड देन पास.
0: यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक. यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति, नियमयति, दंडयति, स्वान, अपने को नियमित करना. उस पुस्तक का नाम है नियम.
1: The book which tells us how to control ourselves is called नियम.
0: नियम, यम अपने को रोकना.
1: यम इज द बुक विच टेल अस हाउ टू स्टॉप आवरसेल्व्स.
0: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, वो नियम हो गया.
1: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स, व्हेन योर
0: नियम मींस कानून को पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.
1: To follow the laws and rules to put it in your life, this is called नियम.
0: यम नियम के बाद में आसन है.
1: After that is
0: यम. बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं, हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम.
1: So
0: और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन.
1: So the third book, Asan, tells us how to keep our body clean and how to make it strong and so on. And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
0: Asan से आपकी body शुद्ध होती है और इसी प्रकार से प्राणायाम से आपके अंदर पांच ईयर है, वो पांच ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए, सामान की, मटेरियल की, सामान की.
1: सो लाइक द आसनस प्यूरिफाई द बॉडी, मेक इट क्लीन, द सेम वे द pranayam does for all these five pranas, five types of air, which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रत्याहार आता. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है salt and sweet. समझ गए? प्रत्याहार माने अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
1: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड.
0: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: सो नाउडेज इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा, इट्स ओनली मेंशनिंग जस्ट आसनस एंड प्राणायामस, व्हाट इज गुड फॉर द बॉडी, बट यामा एंड यामा द रूल्स ऑफ आउटर एंड इनर बिहेवियर दैट नोबडी टेल्स.
0: आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
1: So after the asana and pranayama, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
1: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
0: ये मेरा चमनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रत्याहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
1: So
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
1: So instead of pratyahara, which means coming inside, is vyapar, which means expand, so this is not good for yoga.
2: Guruji, ye baitha na.
0: Baba Ramdev ji. Kaha? Aja wo. Hamara chela hai wo. Unko pata hai sabko. To usme ye hai. Ab iske baad mein hota hai dharana. Dharana, jo swayam ka judgment hai, swayam ki swikriti hai. स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला है। धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला। ओ भाई
1: सो यू लुक
0: संन्यास लेगा
1: मींस धारणा
0: नहीं लेगा नो धारणा
1: Dharana means actually also concentration. So you look at my the Dolak person if he wants to have sannyasa. So he said no, thank you.
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
1: Somebody told me you are a great person. You cleaned and purified, and you cross over 21 of your family lineage. All 21 generations crossed over this sansara. You are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली. तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो. तुम भी संन्यास ले लो. उसने कहा, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, no no no no no.
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi. You also take your 21 generations across this world. I said, no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
1: So desires in this life, they are not fulfilled for this person, and his concentration towards God, dedication is not there.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है. ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है, वो ध्यान business बन गया.
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है. लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: So like this now, this meditation classes and so on, they are there just to make it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूंगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: सो इफ आई टेल यू प्लीज टेक द मनी फ्रॉम मी एंड देन आई गिव यू 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees, विच वन यू विल टेक?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: फ्रॉम ऑल ऑफ
0: 500 का ना, 500 का.
1: फ्रॉम ऑल ऑफ दिस यू विल टेक
0: 500 का, ठीक है ना?
2: 2000 का
0: बंद कर दिया मोदी ने यार, 2000 दे दे. 200 का नहीं, कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी, नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो.
1: Now we are like
0: again hand. Yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती.
1: So you can do ध्यान which when you value something really much.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्तोपि दुःखेन गुरुणा न विचालयेत. तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका remember. आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है, अगर आप दो घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व तो आपकी लाइफ में ज़्यादा है।
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this, after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता है, संसार होता है, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता है।
1: There is a family...
0: क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है।
1: The, for any human, the life, the family and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि। हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था, दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है। समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है, केवल केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते हैं।
1: समाधि इज व्हेन यू feel only yourself, there is no connection with your body, there is no connection with this world, you have connection only with yourself.
0: हमारे विश्वगुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प।
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जहाँ पर साधक पक्का है और उसको ऊपर उठाने का साधन भी सच्चा है, और जहाँ की उसका गॉड जो उसको पाना है वो भी उसकी समझ में है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि।
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है जहाँ पर न तो शिष्य रहता है न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि।
1: So in Nirvikalpa there is neither disciple, there is no guru, they both merge into the God, अहम ब्रह्मास्मि, I am Brahma.
0: ये हो गई अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे।
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं।
1: So 12th class is भक्ति।
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं, 9।
1: In the course of bhakti there are 9 books.
0: 9 पुस्तकें। बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना, नहीं हमने सुनना चाहते।
1: So first
0: श्रवण भक्ति।
1: So first is listening, so listen only what Vishwa Guruji says, nothing else.
0: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो, ये कीर्तन है।
1: कीर्तन और रिमेम्बरिंग इज दैट यू रिमेम्बर ओनली द वर्ड्स ऑफ विश्व गुरु जी, नथिंग एल्स।
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं, ये स्मरण भक्ति है।
1: रिमेम्बरिंग द स्मरण भक्ति इज व्हेन यू remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है।
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
0: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की, दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने

0: दास्य सेवक शिष्य उसको दास दास्य भक्ति कहा गया है।
1: Next one is serving, to serve the Guru and God.
0: दास अपना अपना अस्तित्व अपना महत्व अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में उसको दास बोलते हैं।
1: Das or servant is when you renounce all of your I or of your egoism and then you dedicate your life to the service of the Guru.
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है तो उस समय पर गॉड भगवान गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का विरोध व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं।
1: Sakha Bhakti is the next step, is when you believe to entrust your guru so much that he also can become like your friend.
0: हमारे सनातन धर्म वैदिक मार्ग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नजदीक गए तो भगवान ने उनको फिर दास नहीं रहने दिया, सेवक नहीं रहने दिया, उनको सखा बना दिया। सखा मित्र
1: So, like
0: फ्रेंड।
1: when Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
0: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है। बोलो महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सवेरे चला चलूंगा। चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया। कहते आत्मनिवेदन।
1: Atmanivedan is when you say, I'm going with you tomorrow morning, I will go with you wherever you want.
0: वो आत्मनिवेदन है। आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं।
1: So it's a request of the soul that I want to live in that condition. I want to live in such a way like a God is living.
0: इसके बाद में फाइनल MA की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए। वो क्या है? ज्ञान की भूमिका।
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one. Or introduction to knowledge.
0: उसमें सात पुस्तकें हैं, उसमें
1: Or
0: सात पुस्तकें
1: seven
0: विद्यमान
1: books.
0: की गई। सेवन
1: Seven
0: सेवन
1: books.
0: सेवन बुक्स उसमें है। पहली बुक्स क्या है? सुभिक्षा। क्या है भैया? सुभिक्षा क्या है? बोलो गुरुजी, अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम काम आना।
1: First book is Swaicha or the own desire, and you say, Gurudev, I want to live with you.
0: अच्छा
1: अब
0: दूसरा,
1: most welcome. I'm not stopping you. I have no problem. Come.
0: आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं। अच्छा अब बोलो गुरुजी, बोलो
1: गुरुजी,
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे हैं, ले ले संन्यास।
1: The second one is, oh Guruji, I think the same like you, and Guruji says, okay, then take sannyasa.
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है उसको कहते हैं विचारणा। उसको क्या बोलते हैं?
1: विचारना.
0: उसको विचारणा बोलते हैं।
1: Vicharna means thinking. It's like when your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
0: तन मानसा। इसके बाद में जो है पुस्तक है तन

0: मानसा, गुरु से जब विचार मिलता है तो जैसे बड़ी टंकी में से, पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है। इसलिए उसको तन मानसा बोलते हैं, यानी कनेक्शन, बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन।
1: सो द नेक्स्ट वन इज तन मानसा, व्हेन द गुरु, द नॉलेज ऑफ द गुरु स्लोली स्टार्ट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्मॉल पॉट्स ऑफ शिष्य ऑफ डिसिपल।
0: सत्वापत्ति, अब चतुर्थी जो है ज्ञान भूमि सुविच्छा स्यात्, प्रथमा समुदायता विचारणा, द्वितीय स्यात् तृतीया तनुमानसा, सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात्, पंचमा संसात्मका, पदार्थ भावनी षष्ठी, सप्तमी त्रियगास्मृतम। तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते।
1: सत्वापत्ति इज द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इन गुरु एंड डिसिपल देयर इज नो डिफरेंस इन देयर थिंकिंग एंड एवरीथिंग।
0: पदार्थाभावनी कहते हैं, पदार्थाभावनी, जैसे आपको चाय याद ही नहीं आवे, कॉफी याद ही नहीं आवे, चटनी याद ही नहीं आवे, रसगुल्ला याद ही नहीं आवे, आइसक्रीम, फिर 15-15 इंजेक्शन।
1: सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू इवन डोंट रिमेम्बर, यू नो, नाइदर एनी स्वीट्स और एनीथिंग, एनी फूड यू लाइक, देयर इज नथिंग देयर।
0: पदार्थाभावनी का अर्थ यह है कि आपके सामने स्टोन हो और आपके पास में जो है गोल्ड हो, इस दोनों को आप बराबर समझे, इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
1: पदार्थ अभाव, the detachment from the anything is like you can have a stone or you can have a goal for you, this is equal.
0: नहीं, पहले असंशक्ति। असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति।
1: असंशक्ति इज व्हेन यू डोंट थिंक एंड देन यू गो बैक टू योर फैमिली, टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन।
0: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा।
1: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
0: Padarthabhavani, jahan sona, mitti barabar lage, koi bhi upalabdhi, koi bhi prapti, sansar sambandhi, jo apne ko prabhavit nahi karti ho, usko shastra ne asanshakti kaha.
1: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
0: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा, और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं। आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर वो क्या नाम बोलते उसको,
1: सांप, सांप, स्नेक,
0: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे?
1: सो लाइक इन भागवत देयर इज दिस कर्स ऑफ किंग,
0: इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं, कि किसी से भी हमको खतरा महसूस नहीं हो, डरने लगे। और कृष्ण भगवान ने कहा, नैनम छिंदंति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, नचैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मार। आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है, ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थिति होने का, स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी। उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
1: So this is that book, Padarthabhav. There is no fear of snakes, there is no fear of death, there is no fear that the fire will burn you, you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the highest form.
0: Turiya avastha usko kehte hain, jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho, aur आपकी उसके प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं.
1: And then afterwards is turiya avastha, the place or the mind state when you have anything around you and then you don't want to do any work in that.
0: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरुजी से इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया.
1: सो इन आवर लाइफ्स from the starting point we have to pass all these tests and we have to convince the guru and the god that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This acharya ji is telling to us that we should success, we passed and we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
0: Purnamadaha purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnameva avashishyate. Om Shanti Shanti.
1: Chidip Narayan Bhagwan ki jay. Devadi Dev Deveshwar Mahadeva ki jay. Indudaran Samrat Smarav Nanji Bhagwan ki jay. Rajguru Mahamandaleshwar Acharya Mahamandaleshwar Shokanand Bharatiji Maharaj ki jay.

0: Sridip Naran Bhagwan Ki Jai, Shri Sata Gurudeva Ki Jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरट है।

देवपुरी स महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

ओम श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। ओम श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री मीराबाई जी की जय।

0: श्रीमाधवानंद जी सतगुरु देव
1: की जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंसवाई महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।
0: महामंडलेश्वर श्री सम्यतरपुरी जी महाराज की जय।
2: शिव शिव शंभो शंकर हर हर महादेव।

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
2: Now we will have next bhajan Akiya Sataguru Charanomelage.

ओम सदीप नंबवान की जय। श्री सदैव श्रमती व की जय। श्री सियालक पोचि मायो क्षित की जय। श्री स्वामत वनंज भगवान की जय। विश्व कोचि मामदलेश्वर पमन सुगिरत श्री स्वामेश्वनंज गुदीव की जय।